राग टोडी विच आप जी शब्द सरण करोगे। पंचम पातशाह जी रचना है। गुरु ग्रंथ साहिब जिस राग विच शब्द दर्ज है उसे विच आप जी इस सरवण करोगे।

दुर्योधन। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम। मन बिरतियां नूं एकाग्र करो। भाई साहब लिखते हैं, फिक्का होके बोलिया दुर्योधन, की प्यासी नौकरां दे कर। भाई साहब लिखते हैं,

चलो ठीक है, मेरे नाल तां तुहाडी शुरू तो बनी ही ने, भगवान नूं उलांबे दे रहे, मैं ते तुहानूं माड़ा ही लगना, पर ए भीष्म पितामा ए करण वर्गे इतने योधे ते द्रोणाचार्य ए तां माड़े नहीं ना सन, असी रात तुहाडे लई इतना इंतजार किया, सारी सभा बैठी रही, तुहानूं इतना ना मन विच ख्याल आया भाई इतने वड्डे बंदे मेरे इंतजार च बैठे ने ते तुसी जाके नौकरां दे घर जाओ। सोचण वालियां गल्लां ने गुरु की साथ संगत, कई बार असी हंकार नाल बहुत कुछ सोच लैने, बहुत हंकार आ जांदा, साडे वर्गा कोई नहीं, लेकिन भाई साहब उन्हां मनुखां दा हंकार तोड़ रहे हैं। ये वार सुना के

राजा बोली थी, बोली जा रही, ठीक है भाई। हुण मैं बोला, भगवान ने आख्या, हुण तू गल अपनी पूरी कर ली, हां हुण मैनू जवाब दियो। भगवान ने आख्या, हुण तू सन्मुख होके सामने होके मेरी गल सुन, तेरे घर विच सबो कुछ सब, पर एक गल मैनू नहीं दिसदी, जिथे एक गल ना होवे मैं उथे भुल के भी नहीं जांदा। कि भाई साहब लिखते हैं,

श्री गुरु गोविंद सिंह कर करना पाए भले मग चारो वरना जेड़ा सिख अपने गुरु का शुकराना अदा नहीं करता भाई साहब आखते ने उस वर्गा नीच ते अकृत कण दुनिया ते नहीं मिलेगा। कलगीधर पातशाह जी ने तेनू कीड़े तो पातशाह बनाया किन्ने उपकार हन तेरे उत्ते ऐ गुरसिख कदी तू कलगीधर पातशाह जी का शुकराना अदा किया है। अज गुरु रामदास अपने गुरु का शुकराना अदा कर रहे हैं अपने आप नू कीड़ा दस रहे हैं तू कितना कुछ शुकराना अदा करने हजूर आखदे ने भाई साहब भाई संतोख सिंह जी श्री गुरु

तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श ले हर भावे। हम अपराधी राखे गुरु संग तेरे।

आज हम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते उनके चरणों की छो प्राप्त होती, कितने बड़े भाग होते हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कब आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते हैं, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए। हजूर कहते हैं साध संग

जागता है गुरु सूरज के मुआफिक है, ये बात अलग है। हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद किए। दरवाजे खोल।

بس کے از صحبت بزرگان شد جذب چشم مغیر چشم مغیر از جمال شبان

तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया तू बेन ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब मुन इंद्र महाशिव जो करी तू बेन अत ऊंचा ताका दरबारा

शब्द गुरपिया गहन गुरिया शब्द गुरु

ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਾਨੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾ ਮਨ ਗਨਤਾ।

अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, अपनी वृथा को हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा, सो ऐसा

ऐ मन लाजुम रसा अवरा पै के मन लाजुम रसा। महाराज सतगुरु जी वचन कर रहे ने पाई जो मन दी बिरथा है ये वाहगुरु अगे आख किसी मनुख कोल ना कहो को। ये बंदा मन दी बिरथा मन दी गल लोकां पास करदा है, मन लोकां पास फरोलदा है। महाराज कहते नहीं, जे लोकां कोल गल करेगा अपना दुख दसेगा वो तेनू भी दुख होर सुना दूगा। बंदे कोल मन ना फरोल, वाहगुरु पास फरोल। मन दी गल गोज गल जी की कीजे सतगुर पास। जो मन दी गल है ऐ मनुख जो तू किसे कोल नहीं कह सकदा तो गुरु कोल कह दे, वाहगुरु कोल कह दे। गोज गल जी की कीजे सतगुर पास तां सर्व सुख पाई। मन दी गल कोई वरी है कोई दुख है गुरु नू आ। महाराज वचन कर दिए ने जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै ता आगे अपनी बिरथा बहु बहुत कडास। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पै जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। वो वाहगुरु अगे बेनती कर जेड़ा एक छिन विच वो दुखां नू दूर करन दी समर्था रखदा है। महाराज इस वचन विच

0: करम।
1: सो अंत सो बहर अनंत कट कट व्याप रहा भगवंत तन माहे आकाश गया सर्व लोक।

पांदरे हरकार गुरु गोविंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोविंद सिंह आल में रोशन गुरु गोविंद सिंह जानो दिल गुलशन

करे वड्डा होए ना आप घणा गुरसिखी दी एह निशानी। एह निशानी क्या वड्डा

सिल अलूरी चटणी साध न पुजे लख लख मेवा लाख भगत जगत विच लिख न गए गुर सिखी देवा लाख भगत जगत विच

ਸੌ ਵੇਚੀ ਆਇਆ ਪ੍ਰਾਂਗੀ ਆਨ ਰੱਖਾਇਆ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਬੁੱਧ ਖੁਆਇਆ।